तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। हा माय अल्लाह, एवरी वन इन योर गार्डन इज अ फ्लावर, द ओनली थॉर्न इन दैट गार्डन इज माई सेल्फ। तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूं। ऑल आई रिमेन यूजलेस ऑल माई लाइफ, नाउ मेक मी यूजफुल। हर दम करूं मैं ए मेरे बारी अल्लाहू।

खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। वल्लाह हैव मर्सी, मेक फजल। वी डोंट हैव दोज एक्शंस, दोज डीड्स दैट वी कैन प्रेजेंट बिफोर यू एंड से वल्लाह विद द वसीला ऑफ दीज गुड डीड्स। व्हाट गुड डीड्स डू यू हैव? वल्लाह मेक फजल ऑन अस, अल्लाह तेरा फजल का मामला फरमा। शो योर ग्रेस एंड मर्सी एंड काइंडनेस अपॉन अस। खुदाया

रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे, रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। ओ अल्लाह, आई एम एट योर डोर हार्ट ब्रोकन। ओ अल्लाह, आई एम एट योर डोर हार्ट ब्रोकन, बट वाई शुड आई रिमेन हार्ट ब्रोकन एट योर डोर? वाई शुड वी डिस्पेयर ऑफ अल्लाह ताला'स मर्सी? If we are heartbroken, then say to Allah Ta'ala, Ya Allah, I'm heartbroken. These are my problems. These are my difficulties. Ya Allah, nafs and shaitan do not want me to take off from the ground. They are dragging me down the gutters. And other problems which are of worldly kind also. Say to Allah Tabaraka wa Ta'ala, you are at the door of the one who is the most generous, the most forgiving, the most merciful. Ah, I wish we had recognized our Allah.

रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। ओ अल्लाह व्हाई शुड आई रिमेन हार्ट ब्रोकन एट योर डोर। आई एम नॉट एट द डोर ऑफ सम माइजरली पर्सन और सम ह्यूमन बीइंग दैट विल गेट एंग्री एंड अपसेट दैट व्हाई एम आई टैपिंग हिज डोर नाइट एंड डे twice or thrice. If that beggar has to tap at our door, then we lose ourselves. Allah tabaraka wa ta'ala, 24 hours out of 24 hours, His door is open for us. His mercy knows no limits. His kindness knows no limits. His generosity knows no limits. What a beautiful Allah we have.